गुर सरदी पाई गए घर प्रीत मराओ जियो वडभागी जपनाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रापासा जियो गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज मगला चौथा मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुर सुजान जियो हौ ना मिटो कुरबान जियो हौ हर घर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो हर तुड़ा दसे घर पाई जियो हर नामे

तू है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े आर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्तु अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवाद होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबन धान, ताद पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सुखुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हरभाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

तिस्तु मन रचना कहो गुसाई मिलिय केहे जो बिवर्जित तिस्तु नेहे रहाओ तूड़ बात सा सच कर जाती सत हो मन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोआं सिरियां का खसम।

की प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी रगाओ, जाको रस हरस आयो तो अनस नहीं लपटायो, जाका कहया दरगह चल सो किसको नदर लय आवे तल, जाका सब कुछ ताका होय, नानक ताको सदा सुख होय, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, जा कै दुख सुख सम कर जापे, ताको काड़ा काम ब्यापे, तेज आनंद घर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय हरहाओ, जाके चिंत बसे मन आए, ताको चिंता कत हो नाहे, जाके बिनस्यो मन ते परमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विर ले जाना, तय कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिसले पुंचा, हरहाओ, अनहत बाणी थान निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला, तय सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हर्ख अनंत सोख नहीं दिया, तो कार गुरु नानक को दिया, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, कमन रूप तेरा आराधो, कमन योग ताया ले साधो, कमन गुण जो तुझ ले गावो, काबल मोर पार ब्रह्म रिझाओ, रहाओ, कमन सो पूजा तेरी करो, कमन सो विद जिद पवजल करो, कमन ताप जिद तपिया होए, कमन सो नाम होमे मलख होए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल, जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल, तेसी गुण

पाई सोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास सासंग खाटी कहो नानक प्रभ अवधा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेस चरण कम मन में परवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ सोग सहज रसमहा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए हर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे सादर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए इस आस क्यों बने माए खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत का शोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बगस लो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, केट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई। रहाओ रूप हीन बुद्ध बलहीनी, मोए परदेसन दूर ते आई। नाहिन दर्बन जो बन माती, मोए नाद की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्राप दर्शन कहो फिर तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साह संग मेरी जल बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। पाए लगो मुझे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी। रखाओ मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मुझे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरो पिछे वैरागी। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गौड़ी महला पंजवा, निगसरे पंखी सिमर हर पांख। मिल साधु शरण गौ पूर्ण, राम रतन हीरे संग राख। रखाओ प्राम की कोई जिना रज पंकज, आदि तीखेण मोह की बात। काटन हार जत गुरु गोबिंद, चरण कमल ताके करो निवास। हर कृपा गोविंद प्राप्रीतम, दीना नाथ सुनो अरदास। कर गलो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुम रीरास। गौड़ी महला पंजवा, हर पेखन को सिमरत मन मेरा। आस प्यासी चितवो दिन रहनी, आए कोई संत मिला वे नेरा। रहाओ सेवा करो दा दासन की, अनक पांत जे करो निहोरा। तुला तार तोले सो सगले, बिन घर दर्श सबो ही तोरा। संत प्रसाद गाये गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा। आंध सूग पेड़ हर नानक, जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। किन बद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता। मुझे मार्ग दे बताई। रखाओ अंतर अलख न जाई, लखिया तिज पड़दा हो मैं पाई। माया मुझे सब जग सोया, तो परम कहो क्यों जाई। एकता संगत एक गृह बसते, मिल बात न करते पाई। एक बदन बज दुहेले, ओ बसते गोचर ठाई। जिसका गृह दिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। आन को पाप करे ही नहीं पावे, बिन सतगुर शरण आई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिवलाई। पंज ना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज पया प्रमुखिन में नाठा। मिले ज्योति जो समाई, हरहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठले। सतगुरु मुझे बतायो, रहाओ जात का देखो तत ता तुम ही। मुझे यो विश्वास हो आयो, कह पे करो अरदास बेनती। जो सुन तो है रग रायो, लेव सहसा बंधन गुर तोरे। ता सदा सहस हो पायो, होना सा सोई फुन होसी। खुद कहाँ दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एक कोठाना। गुर पर्दा खोल दिखायो, नौ निध नाम दान इकठाई। तो बार कैठे जायो, एक एक कनक अनक पांसा जी। बहु प्रकार जायो, कहो नानक परम गुर खोई है। इव तत्ते तत मिलायो, गौड़ी महला पंजवा। औध कटे दिन सरणारे, मान गुरमिल का सवारे। रखाओ करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत पहल की बेला। ईहा खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एव संसार विकार से मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हारस, अकथ कथा तन जानी। जाको आए सोई विहाजो, हर गुरते मने बसेरा। निज कर मैल पौसु सहजे, बौर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बेधाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास यही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राग पिता प्रा मेरे। मुझे निर्गुण सब गुण तेरे। रहाओ पांच बिखादी एक गरीबा, रखो रख नहारे। खेद करे अर बहु संतावे, आयो शरण तुहारे। कर कर हारो अनक बो पाती, छोड़े कतहु नाही। एक बासुनता की ओटा, साह संग में जाही। कर कृपा संत मिले मुए, तिनते तीर जपाया। संती मन दियो मुए निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए महा बिखादी, सह सोहेली बाणी। कहो नानक मन पया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबना सीर आया। निरपो संग तुम्हारे बसते, यो डरन कहां ते आया। रखाओ एक मैल तू होए अफारो, एक मैल ने मानो। एक मैल तू आपे आपे, एक मैल गरीब बानो। एक मैल तू पंडित भगता, एक मैल खल होता। एक मैल तू सब कुछ ग्राहज,
ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਸ਼ੂ ਨ ਲੇਤਾ, ਤਾੜ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਂ ਕਰੇ ਬਪਰੀ, ਖਿਲਾਮਨ ਖਾਂ ਰੋਜਾਨੇ, ਜੈਸਾ ਪੇਕ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜਿਆਨੇ, ਅੰਗ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤ ਪਦ ਕਰੀਆ, ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ, ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰਾਖੇ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਨ ਖਿਸਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੇ, ਜਿਨ ਇਹ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰਮ ਪਰਸਵਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੋੜ ਛੋੜ ਦੇ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ, ਉਰਜ ਰਿਹੋ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ, ਜੋ ਕਿਰਖੇ ਹਰੇ ਆਇਓ ਪਸੂਆ ਰਖਾਓ, ਜੋ ਜਾਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਜ, ਤੋ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ, ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਦਾਸੀ, ਫੇਰ ਫਿਰ ਅਰਕਾਲ ਗਰਸੂਆ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਰਾਜਮਾਚ ਤਿਨ ਹੂੰ ਲਓ ਹਸੂਆ, ਸ਼ੀਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਾ ਰਹੇ ਨੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਸ਼ੂਆ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਹੀ ਬਿਰਹਨ, ਹਾਰ ਉਤੇ ਤਨਖੀ ਨਸੂਆ, ਜੋ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹ ਨੀ ਬਾਲਾ, ਉਸਤੇ ਕੱਟੇ ਨਾਹੀ ਰੁਜ ਚਸੂਆ, ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹ ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਤੋ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਤੇ ਗੁਰਬਸੂਆ, ਮਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ, ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਘਰ ਜਸੂਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਮਨ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾਓ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਬੇਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਰਸੁਕਾ ਮੈਂ ਤੁਤੇ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗੇ ਅਤੋਲੇ, ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ, ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਆਵੇ ਗੋਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ, ਪ੍ਰਾਂਪੋ ਕਾੜ ਕੀਏ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਜਪਤੇ ਹੋਮੇ ਮਾਰੀ, ਜਨ ਮਰਨ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਿਸਾ, ਸਾ ਸੰਗ ਦਰਸਾਰੀ, ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰਸੇਵਾ, ਬਾਰ ਜਦ ਲਖਬਰੀਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਪੋਜਲ ਤਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗਮਰੀਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਮਰੀ ਜਾਵੇ ਤੋਹੀ, ਤੇਰੋ ਰੂਪ ਸਗਲ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਰਖਾਓ, ਸੁਰਗ ਪਿਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਇਕ ਓਹੀ, ਸਿਵਸ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰ, ਸਰਮਯਾ ਠਾਕਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਤੁਮਰਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤ ਲੋਹੀ, ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਸੰਤ ਰੇਸਿਓ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ, ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ਰਖਾਓ, ਅਣਗ ਜੋਨ ਬੋ ਜੋ ਨੀ ਪ੍ਰਮਿਆ, ਬੋਰ ਬੋਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨ ਖੁਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਘਰ ਰਾਇਆ, ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਜੁਸ ਪਾਣਾ, ਅਵਰ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਮਰੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਤ ਨਾ ਹੀ ਸੂਤਾ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪਦ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਯਾਲਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਰੇ, ਅਨਾਥੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੂਰ ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ,

संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो पयो प्रगास सर उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन पय ठहरायो मान आज्ञा सर सो पाए दुख ठाओ गवायो जो सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर तब आनंद रूप दिखायो नाकश आवत नाकश जावत तब खेल की उहर आयो तो नानक अगम अगम है ठाकुर भक्त ते कर नायो गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकि ओढ़ भी जय रे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रखाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बुझ सुख पाइये रे तो प्रभु करे सोई परमानो सुखद ओई त्याये रे ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द हो पंजन स्वामी जे भावित से नवाजे रे सब को माल पिता प्रतपाल जी प्राण सुख सागर रे तेंदे तोड़ नहीं तस करते पूरे और तनागर रे जाग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हर घर कबूरा मनो विसारे ईगा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रखाओ महा कटका टेख पीतर रसना नाम पितारे शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते रख हृदल पारे उतारे चरण कमल आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन मनाकार काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन औरतने मूर्ख सास संगत जप एखे ना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग हैबर गैबर राज रंग जागत लो गए मूड रंग चूवा चंदन दे पूलिया सो तन तरसंग रूलिया मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मान कर तर बेहर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ कल काल अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी मतवारो माया सोया गुर पेड़ तो प्रम पोखोया कहो नानक एक तिहाया काल कर नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा तारी गुरे टेक रखाओ अंग जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बगसीस बजो मिल एक नाम सूग सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से पले नानक तेन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर जे करण कराम नो तिन मैं पोहे जाम का रखाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है लाख इगमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए अंग बुद्ध कर्म कुमामने ग्रे बालू नीर बगामने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया रहाओ करण करावन तुही एक जी जंद की तुही टेक राज तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे पर मोह पो सदिये रहाओ वेद पुराण सिमरत पने सब ऊच ब्राजत जन सुने सगल स्थान पे पीत कीन राम सेवक रहत कीन लख चौरासी जून फिरे गोविंद लोकनी जन्म मरे बाल बुस्यान पहो में रही हर सासरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत घर सेवी है सास हर त्याई है रखाओ संत संघर मन मसे दुख दर्द अनहेरा प्रमन से संत प्रसाद हर जापी है तुझन दुख ना व्यापी है जाको गुरु हर मंत्र दे तो उबरिया माया अगणते नानको प्रमया कर मेरे मन तन वसे नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम ईगा सुख आनंद कना आगे जी के संग काम रखाओ
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ ਹਰ ਵਿਸਰਾਮਦ ਪਾਇਆ ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਊ ਕੋ ਪੀਰ ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ ਤਾਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਤਨੀ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਕੇ ਕਮੀ ਕਰਨੇ ਗਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ ਬੇ ਬਰਚਿਤ ਬੇ ਸੰਤਨਾ ਆਉ ਸਿਉ ਰੇਹਤਨੋ ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਧੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸਲੇ ਜਿਤਨੋ ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇ ਦਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਤਾਨ ਪ੍ਰੋਕਾ ਖਾਨਾ ਰਹਾਓ ਐਸੋ ਹੈ ਰੇਖਸ ਹੁਆ ਮਾਰਾ ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰਨਾ।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

पायो बाल बुध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौलो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटिया तो आंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौलो भे केरे मन तन बुध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौलो डान परे पोट डार गुर।

सगल बिसारी, करमस्त गुर पूरे करयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके, आचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पराई, कहो न जाई यो अचंपो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया, गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, महापुरखन यों कहया, बिन घर भजन नहीं निस्त।

बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रखाओ सबे गल्ला जातियां सुन के चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोड़िया दे बुझारत सारता से अखें डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया एक स दो चौक्या गणी सात एक त साध मुठी एक अदनाय रसीड़ा।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवां, हर राम राम राम रामा।

आदो एव मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई, रहाव कठन क्रोध कटही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, योगी जतन करत सब हारे,

मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाब और हाओ, पातत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम्हें आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अब महान।

महा संकट बाण तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे। नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

देखो सोज बिचारी रतन जन्म अपनो ते हारियो गोविंद गित नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन स्यों बिरथ औध सिरानी कहो नानक सोई नर सुहिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निर्भय पद नहीं पावे गौड़ी महला नावा नर अचेत पावते डर रे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताए तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जस गुण गावत ताको नाम ही ये मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सेमर सेमर कसमल सब हर रे मानस दे भौर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुवारे री एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद निस्द निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिगुटी छूटी बिम मजहार गुर की मत जिये आई कार इन बिग राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रखाओ एक सुख मान्या सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पै सूहा रंग माया नदर पई बिग ठाक रखाया उल्ट पई जीवित मर जागया सदरवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिग पर हर त्यागया पाए बसे जमका।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुगत इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आ पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुगध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साज भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुरोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैन फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रि सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो काबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड़स

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अभरो काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा।

ते सरनाई सत कर बैसे काल न जोह है मनमुख आवत जावत दुख मोह रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रही है निर कर बैस सहज कर लई है हस माते उस कही है गुरमत चालने चिल नहीं डोले गुरमत साच सहज कर बोले पीवे अमृत तत विरोले सतगुर देखिया दिखिया लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सजो त्योपार जय देखो है एक अंकार रहे निरालम एक असर करनी परम पद पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चुकी अंग प्रमणी एन दिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच मैल गुर अलख लखाया निचल मैल निशाया माया शासन तोखे परम चुकाया जिनके मन मसिया ससोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच ना मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम चित्रा पे जाका उपजंब दर्शन की जे ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा तेत काट अनहद बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार थे प्रभ राखे कृपा तार जिनके हृदय हर घर सोई तिनका दर्श परस होई सर्व जिया में एको रवे मन अहंकारी फिर जूनी पवे सो बुझे जो सदगुर पाए होमे मारे गुर सब दे पाए अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ होए दयाल नानक जन करिए सोले अष्टपदियां गुवारे री गौड़ी पिया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ज्यों गाई को गोयली रखे कर सारा अहंस पाले राख ले आत्म सुख तारा ए त्युत राखो दीन दयाला तौ शरणागत नजर निहाला हरहाओ जय देखो तय राव रहे रख रख नहारा तू दाता पूता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अध ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन से ना अंधेहारा जग बिरसत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रापाया सच मुक्त द्वारा निकर मैल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या फसे जमजाला डोल बदा का जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर है सहजे पद पाई है अंतर शब्द निधान है मिले आप गवाई है नजर करे प्रभ अपनी गुण अंक समाव नानक मेल ना चुकई लहा सद पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा घर का नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे ला कर्म कमाव ही बिन गुर अंधेहारा रखाओ अंधे अकली बारे क्या तिरसो कही है बिन गुर पंथ न सूझई केत विद निर्भई है खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का ना हो पारखू कली काल विडाने सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नी रोता आपत को जाता कहे जाते को आया पारकी को अपनी कहे अपनो नहीं पाया मीठे को कौड़ा कहे

आप हो जाओ, मानव को सूत को कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे नाय, रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जम्मे वारो वार।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, हर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप देवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

एकै सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमोह बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी।

कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब ताके ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी नान।

लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर अथाह दूसर आई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो मनहार होसद आया ओवाका अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस हे जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदन नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम हे राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर कै दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम सुमाओ पौड़ी यही आ जारो दुर्मत दो तिसे त्याग।

नानक उबरे जप हरी सा संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत क्या फिरो टूंढ या मनो माघे संग तुआरे प्रभ से बन मन

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग होर पूरे उपदेसया। नरक नाहे सा संग पौड़ी, नन्ना नरक परे ते नाही। जाके मन तन नाम साही, नाम निधान गुरमुख जो जपते। बिख माया मै ना ओए खपते, नन्ना कार न होता ताको। ना मंत्र गुर दीनो जाको, निध निधान हर अमृत पूरे। ते बाजे नानक अनघ तूरे, सरोप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

कर कृपा। हम मूढ़ पापी जित लगतारा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखबनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदगुर ए नमः, जुगादगुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन मय मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

मन हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुखाय। प्यार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे कोई अपनी शोभा लोर है, साध संग ए होमे शोर है। जे को जन्म मरण ते डर है, साध जना की सरणी पर। जजन को प्रदर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे अब महान।

भगवान तरण कराम अनहार सुवामी सगल कठा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म सहित धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर

काल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी तवन मूल ते कम दृष्टानी जिंतु सासवा सीगारेया सर्व अग्न में जिने उबारेया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बक्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद थार ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप करण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभ आपे।

छोड़ के लागे आन सो आए, नानक कहू ना सीजय, बिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को का करे, जे ठाकुर सो ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास।

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मय ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्मज्ञानी सरा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्म ज्ञानी सुफल फल, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हो

की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

विचार कबू ऊब कस पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबो पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ती स्नान कबू सिर साधक हो ज्ञान कबू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

रेणु निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जून लवे संतन के दुखन सर्प जून पाए संत के दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सबको शले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संदोकी का थाओ को नागे नानक संत पावे ता ओए पी गद पागे संत का निंदक मा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा तेयारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्ब रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी

संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते टरे, संत के दुखी को ना घिंचाओ, नानक संत पावे ता लहे मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान फरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो साथ बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किश ना आगे, आपन बीज आपे ही खागे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लए ओबार, संत का दुखी यों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईदन नहीं तापे, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तेर खेत में दोहेला, संत का दुखी तर्म ते रहत, संत का दुखी सब मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक जोत पावे सोई थेया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी तो दरगह मिले सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे नयासा, संत का दुखी उड़ चले निरासा, संत के दुख ना तृष्ट कोय, जैसा पावे तैसा कोई होय, पया कीर्तना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोय, तब कर सके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत

तेन पुरख का उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करने गार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

मंगल सुध जाक सर्व थोक सुनहे करताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थि पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो होआ होवत सो जाने, प्रभ अपने कहो पछाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे इनकी ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोग का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावे, इसके दर्श सब पाप मिटावे।

हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे वो माया के संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगस नानक परम मोह दुखते ते नस तब तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेश पाओ चूका निरप होए बसे सगल ब्याद मनते खे नस्से।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जे तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सो कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक ताटी जमपासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गम मिटे प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर घर सिमर प्राण आधार अनक पावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अरबंता इन ते कहो तुम कमर सनाथ राज रंगमाया विस्तार इन ते कहो कमर छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंप चूड़ पासारी जिन दिए ते बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किलबिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे दिख पैल होए चिंत बसे सुख नाल साध ग्रासगर नाम सुमाल छाड सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार की हां सुख दरग है जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप ए भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक अराद प्राश्त गए मन तन अंतर ए प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम ताजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होय हारस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर परगास अनदिन निवलाग बड़भागी जप्या प्रसोय नानक नाम रते सुख होय
सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनू सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया, इस पुनी सरदा सा पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम सुमाए, सो क्यों बिसर जे काल ना पन, सो क्यों बिसर जे की आ जान, सो क्यों बिसर जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसर जे जीवन जिया, सो क्यों बिसर जे अगन मैं राख, गुर प्रसाद को बिरला लाख, सो क्यों बिसर जे बिखते काढ, जन्म जन्म का टूटा गंढ, गुर पूरे तत हे बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पै तरिगे संसार, पिन भगती तन हो सीशार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिकसे साध चरण तोए, भगत जना के मन तन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बस दीजे कर्मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व सुमाए, प्रभ संत दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जप सो होए पुनीत, भगत पाय लावे मन गीत, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अंतराज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर घर नीत, पली सुकरणी सोपा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रद्यो निवास, सर्व सुख नानक परगास, श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन सुमति आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार, यो कशना दृष्टेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध, ता बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग होक से व्याप्त, जब अपने आप पार ब्रह्म, तब हो कांक सोवद परम, अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी, ता बंद मुक्त को किस को गनी।

तिगर अग्नि अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रसहित सुपाय, तब से सकत कहो कत जाय। जब आपे आप अपनी जोत तर, तब कम निडर कमन कद डर। अपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अग्नि अपार। अविनाशी सुख अपने असन, ते जन्म मरण कहो कहां बेनासन। जब पूर्ण करता प्रसोय, तब जम की त्रास कहो किस होय। जब अवगत अगोचर प्रावेक, तब चित्र गुप्त इस पूछत लेख। जब नाथ निरंजन अगोचर अगध, तब कौन छुटे कौन बंधन बध। अपने आप की अचरजा, नानक अपन रूप आप की उपरजा। ये निर्मल पुरख पद होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय शल शिद्र लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी जो संग सुमावे, तय किसे पूख तमन तृप्तावे। करण करामन करने हार, नानक करते का नाय सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तय वेद कतेव कहां को चीन। जब अपने आप उर तार, तो सगन अब सगन कहां विचार। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, ते कौन ठाकुर कौन कही है तेरा। बिस्मन बिस्मर है बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप। जय अशल अछेद पे सुमाया, ऊगा किसे व्याप तुमाया। आस को आपे आदेश, यो गुण का नाही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत इस लागे चिंता। जय अपने आप पतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आपर चोपर पंचकार, यो गुण मैं किन्नो विस्तार। पापुन ते पई कहावत, को नरक ओ सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मो परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच हो नानक एक। जय अवगत भगत तय आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। धूपा काया पे तनी, उनकी शोभा उनहू बनी। आपे कौतुक करे अंध चोज, आपे रस पोगन निरजोग। जिस पावे तिस अपन नाए लावे, जिस पावे

करे सतगुरु की इस कार्य सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पोत तन लक्ष्मी खड़ मेले घर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगे धूड़ तेन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिन को आप दे वड्याई जगत पी आपे आन तिन को पैरी पाए डरिए तां जे किश आपदू कीचे तब करता अपनी कला वधाए देखो भाई इहो अखाड़ा अगर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे अगर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए सतगुर की वड्याई निंद चढ़े सवाई हर कीर्त भगत नित आप कराए अनदिन नाम जपो गुरसिखो हर करता सतगुर करीम साए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुरसिखा के मोह उजले करे घर प्यारा गुरका जयकार संसार शब्द कराए जन नानक घर का दास है हर दासन की घर पैजर खाए पौड़ी तू सच्चा साहेब आप है सच सा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वन जा रे तारे सच सेव है सच वन जल है गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहेब अलख है गुर शब्द लखारे श्लोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तेदा कदे न होवी भला उस दे आखे कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उस दा सब गया नित चुगली करे अणहुंदी पराई मोह कढ़ न सके उस दा काला पया कर्म धरती शरीर कल युग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए गल्लां उपर तपासना होई विस खादी तत्काल मर जाए भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए जन नानक कौसल सोजी पाई हर दाकियां बातां आख सुनाए महला चौथा होंदे परतक गुरु जो विछड़े तिन को दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थोक थोक मोह पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके निध पंबल पूसे खाही जिन गुर को प्याय अपना से लेंदे ठा फिराही तिन की भुख कदे ना उतरे निध भुखा भुख कूकाही ओना दा आख्या को ना सुने जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले रहंदी खोंदी सा पत गवाही ओए अगे कुश्ती गुरके फिटके जे ओस मिले तो कुछ ते उठाही हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही उर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही जन नानक नाम अराद तू तिस अपड़ को ना सकाही नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही महला चौथा जे हुंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे जिसके मस्तक हस्त धरया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई न चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करते आप बैठ गया आपे पैज रखे प्रसोई पौड़ी ताया कोट अपार है अंदर खट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वत समाले नाम दान खरवण जीए हीरे पुरवाले विण काया जे होर थे तन खोज दे से मूड बेताले ते उजड़ परम पुआई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खूह है
ਉਥੇ ਪਕੜ ਓਟ ਹੋਇਆ, ਕੂਗ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਹੋ ਔਖਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਇਆ, ਓਨ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਲਾਹ ਮੂਲ ਸਭ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੁਣ ਦਾ ਬਲਦਕਾਰ, ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਵਜੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਸਭ ਕਿਛ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਿਨੇ ਬੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵੇ ਆਪਣੀ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਤਰ ਗਇਆ, ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗੋਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਅੰਤਰ ਜੋਧ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ ਪੌੜੀ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੁਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਧ ਪੋਤ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸਰਮ ਸਰੋਤ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਤੂੰ, ਸਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਭ ਰਸ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ।

नामे लिव लाव ग्रह तन साब पवित्र होए हर के गुण गाव हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पाव पौड़ी जो तू पावे सो भला सच तेरा पाना तू सब में एक वर्त।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब केश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रहे ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना कानी मस्तक हो वे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

पकड़े चरण हार, तेस दर कहे मल्ल। सलोक महला पंजवा, जाजक मंगे दान, देह प्यारिया देवन हार दातार। मैं नित चितारिया, निखुट न जाई मूल, अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार। तेन सब किश सारिया, महला पंजवा, सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक पौड़ी। उथ अमृत वंडी है, सुखिया हर करणे, जमके पंथ न पाई है, फिर ना ही मरणे। जिसनु आया प्रेम रस, तिसे ही जरणे, बाणी उचरे साध जान, अम्यो चले चरणे। पेख दर्शन नानक जीवया, मन अंदर तरणे। सलोक महला पंजवा, सतगुर पूरे सेवे, दुखा का होए नास, नानक नाम आराध्य, कार्ज आवे रास। महला पंजवा, जे सिमरत संकट छुट, अंध मंगल विश्राम, नानक जपिए सदा हर, निमख ना विसरो नाम पौड़ी। तिनकी शोभा क्या गणी, जिन्नी हर हर लद्दा, साधा सरणी जो पवे, सो छुट्टे बद्दा। गुण गावे अवनासी है, जोन गर्भ ना दद्दा, गुर पेटिया पार ब्रह्म हर, पाड़ बुझ समद्दा।

जो बीजे सोखा है तिसे प्राप्त नानका, जिसनु लिखिया आए महला पंजवा, मंगना ता सच एक, जिस तुल देवे आप, जित खादे मन तृप्ति है, नानक साहेब दात पौड़ी, लहा जग में से खटे, जिन हर तन रास, द्वितीया पाओ ना जाननी, सच्चे दी आस, नेचल एक सरेवया, होर सब विनाश, पार ब्रह्म जिस विसरे,

कबीर जी, उबजे निबजे निबज सुमाई, नयने देखत इहो जग जाई, लाज ना मरहो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रखाओ, अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अग्न

आप मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे काल हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी। सागत मरे संत।

जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी, विधवा कस ना पई महतारी, जे नर राम भगत ने साधी, जन्मत कस ना मो अपराधी, रहाओ मोच मुच गर्व गए कीन बचया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पीतन में मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम ना पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही।

कहिए आपन कया ना लेगी। सर जियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कैत कबीर अकुल नहीं चेतया बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन सुमाया। अंजन माये नरंजन रहिए बौड़ ना पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बुलोइए गुरमत मनुआ अस्त्र राखो। इन बिद अमृत पीओई है रघाओ। गुर के बाण बज्र कलश दी प्रगटिया पद परगासा। सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका निचल शिव कर बासा। तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए यो जग बेद्या पाई। दहज बूढ़ी पवन चुलावे डोर रखी लिवलाई। उन मन मनुआ सुन सुमाना दुबदा दुरमत पागी। कहो कबीर अनपो एक देखेया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन टिप दे उल्ट पवन चक्कर खट पेदे। सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट सुमाना गुर प्रसाद अगल पई अवरे। ना तरथा बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे। जिन जैसा कर मानिया अलौती का जैसे पया बरेडा। जिन पिया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है। ऐसा कोए बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता। तिन तैसी चल देखी गौड़ी ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया। ते उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दो सुब्याप। सुन समाद दो ते नाही सहज की अकथ कथा है।

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिलस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जोंग में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये जाते पाइये पर मन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, बिपत देख न रोए, जो संपै त्यो बिपत है, बिद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार, राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तैरची पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनार सुगाऊ रे हुआ का स्वरूप, देख मुई ग्वारन मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी बिपल बस्तर केते है पैरे, क्या मन बदे बस कहा पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना रगाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी ये जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पट होए नाचो या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या बिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दस नाही, तब यो नंद कहां थोरे रहाओ।
संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, कर पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए बो, सुज कुंचर वेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार, पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मान मन की मिले, छुटकत बज्र कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले, गुर निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख, निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, राग आस महला पहला, कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह, सो कर केह, जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख, केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिसो कही है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनु पौन पानी बै संतर, गावे राजा तर्म दुवारे, गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख तर्म विचारे, गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारे, गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले, गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनु साध विचारे, गावन तुदनु जति सती संतोखी, गावन तुदनु वीर करारे, गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर, जुग जुग बेदा नाले, गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन, सुरगुमश पय आले, गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते, आठ सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनु जोध महाबल सूरा, गावन तुदनु कहानी चारे, गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, सेई तुदनु गावन जोत पावन, रते तेरे पवित्र साले, होर केते तुदनु गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता अपना, ज्योत दी वड्याई, ज्योत पावे सोई करसी, फेर हुक्म ना करना जाई, उपात साहो सहा पद साहेब, नानक रहन रजाई, आसा महला चौथा, सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावे तुझी, हर सच्चे सृजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हार, हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सब निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, हव तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हव तुद बिन अबर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेवै तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावे तुझ जी, छे जन जुग में सुखवासी, छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो, तिन टूटी जम की भासी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, इनका पाओ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जियो, ते हर हर रूप सुमासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंत, तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनक अनेक अनंत, तेरी अनक करे घर पूजा जी, सब तापे जपे बेअंत, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी,
ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖੇ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ।

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

मत देहे ते ही को पावे तुदे आपे पावे ते वे चिलावे राग रतन परियां परवार तेस विच उपजे अमृत सार नानक करते का यो तनमाल जे को बुझे यो विचार आसा मगला पहला कर कृपा अपने कर आया तामिल सगियां काजर चाया खेल देख मन अंध पाया सहो भी आने आया गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे कर आया जग

अमृत चख सतगुर सेव अमृत शब्द पाख साचे शब्द मुक्त गद पाए नानक विचों आप गवाए आसा महला पहला जो तन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया हृदय नाम नाही मन पंग अनदन नाल प्यारे संग हर जो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी गरस पाया ना पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बल हारे जाओ जो हर राते से जन परवान जिनकी संगत परम निधान हर बार जिन पाया तन नारी हर सो राती शब्द विचारी आप तर संगत कुल तार सदगुर सेव तत विचार हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सद पाओ नानक बख्शे पूछ न होए दूजा मेटे एको सोए आसा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक आ रते रहे सुमाई एक तरण गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई यो संसार बेखवत अद फौजल गुर शब्दी घर पार लंघाई हरहाओ जिनको आप लय प्रामेल जिनको काल न सके पेल गुरमुख निर्मल रहे प्यारे ज्यों जल अंब ऊपर कवल निरारे बुरा पला को किसनु कहिए दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लइए अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार सात वेद सिमरत बो भेद अड़सड़ मजन हर सरेद गुरमुख निर्मल मैल ना लाग नानक हृदय नाम वड़े तुर पग आसा महला पहला नेव ने पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हृदय हर रविया हृदय देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन घर लभ मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे विच होमे परम न जाई सदगुर मिले तहोमे टूटे ताको लेखे पाई हर घर नाम भगत प्रे प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वचल जग जीवन दाता मत गुरमत घर निस्तारे मन स्यो जूज मरे प्रपाए मनसा मने सुमाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किस को कहे सुनावे किस को किस समझावे समझ रहे किसे पढ़ावे पढ़ गुण बूझे सदगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पाज मेरे मन गैर गंभीरा रहाओ अंत तरंग भक्त रंग अनदन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म सागत संसार राम भगत जन रहे निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया।

चित्त पंच गुप्त मन वस थिर न रह जैसे पवे उदस मन मेरा दयाल सेती थिर न रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे हरहाओ फूल माला गल पैरो गी गारो मिलेगा प्रीतम तब करो गीसी गारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन गारो पंच सखी मिल दुन करेगा सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर सेवा महला पहला मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिगार कामन तन पैर रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोगी तेरे गुण होए न अवरी रहाओ हर घर घर कंटले पैर दा मोदर दंत ले कर कर करता कंगन पैर इन चित तेरे मासूदन करमुंदरी पैर परमेश्वर पट ले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदिर जे दीपक जले काया सेज करे ज्ञान राओ जब सेजे आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया क्या कहिए पाई जो कुछ करना सो कराया कीते क्या चितराई तेरा हुकुम पला तु पावे नानक ताको मिले वडाई साचे नाम सुमावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बहुत हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई।

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कहो गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे, आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए। सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए। सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समाहे। रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने। साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, सेवड फागी जिन नाम ते आया सदा गुणदाता मन वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहण न जाए। आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए। अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए। ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर। बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गद पाए। आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसां शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए। तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर अंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए। हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए आपे भविष मिलाए सोए। कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए हर अंग राते मोह चुकाए। अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारण हार। आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया। सदगुर सेवे सोझी होए दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे सृजन प्रमाण अन दिन राम नाम जग हिरदे। गुर शब्दी घर एको जान, रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए। मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए। गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए। नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए। गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸੁਭਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ

भगत रत्ता जन सह सुपाय गुर कै पैसा चे सा सुमाय बिन गुर पूरे भगत न होय मन खरुन ने अपनी पद खोय मेरे मन हर जब सदा त्याय सदा आनंद होवे दिन राती जो इच्छे सोई फल पाए हरहाओ गुर पूरे ते पूरा पाए हृदय शब्द सच नाम साए अंतर निर्मल अमृत सरनाए सदा सूचे सा सुमाए हर प्रवेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ ते वेखा सोए गुर बिन दाता अवर न कोए गुर सागर पूरा भंडार भूत मरतन जवारे पार गुर प्रसादी दे मनहार नानक बख्शे बख्शन हार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सासोए पूरे पाक गुर सेवा होए सो बूझे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बिनासे अन दिन जागे वेखे ससोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुरते सोजी पाए अंतर मैल गुर शब्द पछाणे आमन जान रह फिर नाम सुमाने जमन मरना गे संसार मानमुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा बो कूड़ कमावे रिश्ता का कीड़ा रिश्ता मैं सुमावे सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पग दृढ़ाए पाणा मने सदा सुख होए नानक सच सुमावे सोए आसा महला तीजा पंच पदे शब्द मेरे ते सदा आनंद सद गुर भेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुरते सा सुमाए जिन को नाम लिखिया तुर लेख ते अनदिन नाम सदा ते आवे गुर पूरे ते भगत सेख रखाओ जिन को हर प्रव लय मिलाए इनकी गैन गद कही न जाए पूरे सदगुर दित्ती वडयाई उत्तम पदवी हर नाम सुमाई जोश करे सो आपे आप एक कड़ी में था प्यो थाप कह कह कहना आय सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन इन्ना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां जुग जाए ज्ञान रतन सचे सह सुमाए नावे जेवड होर तन नाही कोय जिसनु बख्शे सचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा महला तीजा नृत करे बोवा जे वजाए क्यों मन अंधा बोला है किस आग सुनाए अंतर लोक परम अनलवाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप शान मिले प्रसोए रहाओ गुरमुख नृत हर लाग गए पाओ पूरे ताल विचू आप गुवाए मेरा प्रसाचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सस होए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा पवजन जीव तुमर गुर प्रसादी पवज तर गुर के बचन भगत पाए हर जू आव से मन आए हर कृपा करे सदगुरु मिलाए नेचल भगत हर सिंह चित लाए भगत रते तिन सची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर के पाने सदगुरु मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मानस हर बूझे सोई मैं सो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मानस ता सदा सुख होई रहाओ ये जुग में निरपोहर नाम है पाइये गुर विचार बिन नावे जम के वस है मनमुख अंध गवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे ससोई हर के पाने सलाई है पाणा मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू करता सत्यार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पा।

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मल बटानी सह व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्रूप सुजान बचकन आत गर्भ मुहिफाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे भोगे भोग आचार करे शोभा मैं लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन

जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो ना जाई, हरहाओ तोट ना आवे, निखुट ना जाए, खाए खर्च मन रहे अघाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लके का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ दिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हो निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल ने

हर हस चोट होशे रसमाता कारमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुने अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई, आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन,

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रवे अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम स्यों मेरो।

साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली आसा मोहल्ला पंजवा काम क्रोध माया मद मस्तर ए खेलत सब जुए गारे सत संतोख दया धर्म सच ए अपने ग्रह पीतर वारे जन्म मरण चूके सब पारे मिलत संग पयो मन निर्मल गुर पूरे लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ सगले दिस मीत प्यारे सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर दान देत सब जी सम्हारे एक एक आप एक एक एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम तय बहुत उधारे गैर गंभीर बेंत गुसाई अंत नहीं किश पारावारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे आसा महला पंजवा तू बेअंत अवगत अगोचर यो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतराई जा सब तुझ

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा यो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवारा।

परममोहो त्रोसाविनक से जबका दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मलत होवे प्राई अपना की तापावे इहां सुख नहीं दरगह टोई जम पुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच न सके काहू बाते आगे ठौर न पाया रहाओ किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहां बेगूता ते कोई न रखे ओ किस पे करे बुकारा निंद की गत तथु नागी खसमे ए वे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संतन टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सगाई कहो नानक संत खरा रखे निंदक दिए रुढ़ाई आसा मोहल्ला पंजवा बाहर तोय अंतर मल मायला दोए ठौर अपने खोए इहां काम क्रोध मुए व्यापया आगे मुस मुस रोए गोंद पजन की मत गए होरा वर्मी मारी साप न मरई नाम न सुई डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत् योग न पछाने उगर गया जैसे खोटा टबुआ नदर सरापा आया अंतर जामी सब के जाने उसते कहां छपाया कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा महला पंजवा उदम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वस गद रख मन में एक अंकारे तेरा जान निरत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनगद शब्द वजावे रखाओ प्रथमे मन पर बोध अपना पाछे अवर री जावे राम नाम जप हृदय जप मुक्ते सगल सुनावे पर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे ले सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लैबर बूजी खाई रे घर की बलाई अबर सखाई मूसा देख डराई रे अज के वसगुर कीनो केहर कुकर तने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया नी करया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा हेवा अचरज लाया रे दादी दाद ना पहुंचन हारा टूपी निरनो पाया रे मार दुलीचे बैठी ले मृतक नयन दखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार नशाना रे कहो नानक गुर अम्यो पी आया रसक रसक बिगसाना रे आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगुण अपना बिरद समारिया होए किरपाल माध पित न्याई बारग ज्यो प्रद पारिया गुरसिख राखे गुर गोपाल काढ़ लिये महापवजल ते अपनी नजर निहाल रखाओ जाके सिमरन जम ते छुटिए हलत पलत सुख पाईए साहस गराज जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्र पय सहाई एत उतरा कनहारे प्राण मीत हीर तन मेरे नानक सब बलिहारे आसा महला पंजवा जा तू साहेब ता पौ केहा हौ तुद बिन के सा लाही एक तू ता सब किश है मैं तुद बिन दूजा नाही बाबा बिग देखया संसार रख्या करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार रहाओ जाने बिरथा सभा मन की और किस पे आग सुनाइए विण नावे सज बौराया नाम मिले सुख पाईए क्या कहिए किस आग सुनाइए जे कहना सो प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वर्त सदा सदा तेरी आस जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई एत ओत तुझे ते आओ नानक के प्रसदा सुखदाते मैं तान तेरा एक नाओ आसा महला पंजवा।
अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर इहो महारस जने पियो जन्म जन्म चूके पै पारे दुर्त बिनासियो परम बियो दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर मंत्र मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग यो काय तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गए प्रतुमरे है जे विखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रतुमरा यो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा में सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर जियो तन सो मानस देही पाई

आगे हीते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, ऊर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पए, अंधकूप महा कोरते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरे ता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूजे, साचे अलख अपेवा।

आई जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सब मेहरबाना ना मिले रंग माणी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा आसा महला पंजवा कर कृपा प्रभ अंतर जामी सा संग हर पाईए खोल किवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्मन आईए मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे पार ब्रह्म जन दे आराध्या ताके संग तरोरे हरहाओ मां उदयान पाग सागर पे हरग सोग में बसना सदगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधया गुर प्रसाद पए जन्म।

तय ते जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अघाई, रहाओ तुमरा दिया पै नोखाई, ताओ प्रसाद

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा महला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारियो खिसर गयो तूम पर डारियो। साध मोहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रो करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे।

ते आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न साके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी,

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट है रेजा का अपाग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचर

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब विसरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी। संत रविता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जानत दूर। सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित तनाहे। माँ बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाएगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जबत मन तन सब हरिया, कालमा दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया। जिस मन वस्या हर का नाम, नानक इस ऊपर करो।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सच्चा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन।

तू तनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुर अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहरतन अंतर सो छूटे महाजाल ते जिल गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार हो आज उगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार घोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हवन से हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाए अदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा साहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर है या सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत।

वंजन वहन्दे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोय ना किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन

निकटी हुए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल हुए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे। तिस की सोए सुनी मन हरिया।

नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तैसारे, अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर, सुखे नहीं परवेसारे, साजन संत हमारे मीता, बेन हर हर आनीता रे, सा संग मिल हर गुण गाय, यो जन्म पदार्थ जी तारे रहाओ, त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कौन बे तरिये रे, उमन केर अगा गाकरी, गुर सबदी पार उतरिये रे, खोजत खोजत खोज बिचारे, तत नानक यो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोल, मन मानक पतियाना रे, आसा महला पंजवा, दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पावो रे, नाम रंग यो मन त्रिवताना, बौर नकत हूं तावो रे, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, रैन दिन से गावो रे, खिन में थाप्यो थापन हर, इसते तुझे डरावो रे, रहाओ जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावो रे, नानक दास प्रभ आप पै रहा, प्रम पौ मेट लखावो रे, आसा महला पंजवा, चार वर्ण चौह के मर्दन, खड़ दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मुए शलीर, जिन मिर मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे, रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही, मोहकम फौज हठली रे, कहो नानक तिन जन निर्दलया, सा संगत के चली रे, आसा महला पंजवा, नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सुल रस पीकी रे, रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते, अवर ना किश लाई की रे, भिखारी निरारी अपारी सहजारी, साध संग नानक पीकी रे, आसा महला पंजवा, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख न मनते टारी रे, रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुर गाम, हर दम नह जाम, हर कंठ नानक उर हारी रे, आसा महला पंजवा, निकी सा संगानी रहाओ, पैर मूर्त पल गावत गावत, गोविंद गोविंद वखानी, चालत बैसत सोवत हर जस, मंत्र चरण खटानी, हौ हौरो तू ठाकुर गौरो, नानक सरन पछानी, राग आसा महला पंजवा, कार बारवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद त्याग सगल सियाणपा, पज पार ब्रह्म निरंकार, एक साते नाम बाजो सगल दिशे सार, सो प्रव जानिए सत्संग, गुर प्रसादी बूझिए एक हर के रंग, रहाओ सन समरथ एक केरी, दूजा ना ही ठाओ, महा फौज लंघिए सदा हर गुण गाओ, जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रसोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल सा संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभु के, दीगे सब रस भोग, दीन बंद बजी दाता, सरण राखन जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे, एक सिउ निमलाओ, रहाओ वेद शास्त्र जन ते आवे, तरण को संसार, कर्म तर्म अनेक क्रिया, तब ऊपर नाम अचार, काम क्रोध अहंकार बिनस, मिले सदगुरु देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की, भली प्रभु की सेव, चरण शरण दयाल तेरी, तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा, नानका प्रतान, आसा महला पंजवा, डोल डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग, खाट लाभ गोविंद।

ज्यों ज्यों राखै त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे जन्म जन्म के किल विख कट, मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नस, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां, आगम अगोचर।

मालमूत मूड़ जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ। तू आप करता सब सृट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए। साजुग त्रेता द्वापर पणिए कालजुग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत खट खट खट खट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

या सेवक माया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श प्यास आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हौ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हिकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ठान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाय साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

उत्तर अब खट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोर मारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, पार पुर तारया सब ठोरे, अरहाओ सच ब्रत नेम न काल सुनतावे, सदगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तत् बेलोवे, सुबर सरवर मैलन थोवे, जैसे उराता तै सो होवे, आपे करता करे सो होवे, गोर है शीतल अग्न बुझावे, सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप छेद करे आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसया मत एक पाए, तख्त निवासी पंच सुमाए, कार कुमाई खसमर जाए, अवगत नाथ न लखिया जाए, जल में उपजे जलते दूर, जल में ज्योत रहा भरपूर, किस नेड़े किस अखा दूर, नित गुण गावा देख दूर, अंतर बार अवर ना कोए, ज्योत पावे सो फुन होए, सुन परतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार, आसा महला पहला, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ परमे रहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, ना बिहूने माथे शाई, साज तड़ी जग आए बिनासा, छूट प्राणी गुरमुख दासा, अरहाओ जग में बदा भोती आसा, गुरमती एक पय उदस, अंतर नाम कमल परगस, तिन को नागी जमकी त्रस, जग त्रे जित

अंतरवस्त ना जाननी घट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन मैं तप करे नित तीर्थ वासा आप ना जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम ना विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समाए ले

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुकम ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कह पाए प्यार से सुखाली पिरड़वे। हो मैं तिसना मार तर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुने बगसाए लयोन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

सांत सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जेजिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लैलाह गुरम कर आवो सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल सा की रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चल तो पेकी है नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरयो ते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े तार चौथा चंता की जात एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पह प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुलसी गार दिखिया के फीके ता छोडे मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सदगुर चरणी पाए योजन राते राम स्यो प्यारे अंत न काहू जाए हारा जिनी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आघाए अंचल गया साध का नानक

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बीचरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्श

सो करी प्यारे आवर केश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे जे चपिए हर नाओ, साई कार कमावनी प्यारे और मस्तक लेख लिखाए, एक को आप वर्तदा प्यारे घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटजन साजी सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे तेस सिर लेख न होई, ऊड़े ओ माता की कीजे जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने ताहो में कहे न कोई, कक्का केस पुंडर जब हुए विन साबूने उजलिया, जमराजे के हेरू आए माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बंधया अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जिन छोड़ी गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे चारे।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहागन पैने, तंतन कब हूं मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखन को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

क्या प्राणी किसे त्यावो जे अमर हुआ, किसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया। हाहे होर न कोई दाता जियो पाए जन रिजक दिया, हर नाम त्यावो हर नाम समावो अनद ला हर नाम लिया। आयड़े आप करे जन छोड़ी जो कुछ कर

मूड़े अंत गया पछतावेगा। एक सब तू चीने नाही फेर फिर जूनी आवेगा। तो सिर लिखया सो पढ़ पंडित अवरा नू ना सिखाल गखिया। पहला पाया पाया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया। ससे संजम गए ओ मूड़े एक दान तुद कुथाए लया। साई पुत्री जजमान की सा तेरी ए तन खादे तेरा जन्म गया। ममे मत हिर लई तेरी मूड़े होमे वड्डा रोग पया। अंतर आत्मे ब्रह्म न चीनिया माया का मोहताज पया। कक्के काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुझ घर विसरिया। पड़े गुणे तू बहुत पुकारे हिण बूझे तू डूब मुआ। तत्ते तामस जलियो मूड़े थत्थे थान त्रिष्ट होआ। कगे कर कर फे तू मूड़े ददे दान न तुद लया। पपे पार न पदगी मूड़े पर पंज तू पलच रहा। सच्चे आप खुआयो मूड़े यो सिर तेरे लेख पया। पबे पवजल डुबयो मूड़े माया विच गलतान पया। गुरप्रसादी एको जाने एक कड़ी मैं पार पया। ववे वारी आईया मूड़े वा दियो तू विसरिया। ए वेला ना लैसे मूड़े फिर तू जम के वस पया। झजे कदे ना चूरे मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नाओ बुरा। तदे तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निधान पया। गुरमुख होवे ता हरस पीवे जुगा जुगंतर खाए पया। गगे गोविंद चित कर मूड़े गल्ली किने न पाया। गुर के चन हिरदे साए मूड़े पिछले गुणे सब बख्श लया। हाय हर कथा बुझ तू मूड़े ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे फे सगुर मुक्त न होई। अरारे राम चित कर मूड़े हिरदे जिन कै रब रहया। गुर प्रसादी जिनी राम पछाता निर्गुण राम तिनी बूझ लया। तेरा अंत न जाई लखया अकथ न जाई हर कथया। नानक जिनको सदगुर मिलया तिनका लेखा निबड़या। राग अस महला पहला शंत कर पहला एक ओंकार। सदगुर प्रसाद मुद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलिया ला राम। तन पिर लेओ कणा रस प्रीत दया ला राम। तन करे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़या रस मूल अबारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तार आप कार्ज सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे। तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने। नानक ठाकुर उम्मीद हमारे
हम नहीं लोका।

जियो, नाम लैन से सोह है, तिन सुख फल होवे, मन से जिन जाए जियो, तिन फल तोट न आवे, जांत पावे, जे जुग केते जाए जियो, जे जुग केते जाए स्वामी, तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम ते आवे, हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है, तिन सुख फल होवे, मन से जिन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शंत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, की वाड़गे रता राम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवे चमके, हर बाज रखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया, सद कहे नानक चेतरे मन, मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पहंतिया, दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना, साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया, पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या, तेल तामन तातो, जाओ मग बादा खाए चोटा, शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़या परदेसिया, इत पवे जंजा ले राम, साचा साए मन मसे, की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी, जाल बद्ध कपाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, पगत कार चित लाए हरस्यों, छोड़ मनो अंदेसया, सद कहे नानक चेतरे मन, जीड़या परदेसिया, नदियां माव शून्या, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे, सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले, पचे मुद अचेतया, हर नाम भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे, मेल चिरी विशुन्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला, साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया, सच मन वसाया, कामन सहजे माती, गुर शब्द

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाय नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तेरे रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

ताकी जद कई ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कई है जो तुद आख मखाने जिसनू नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर सब मै रहा समाए जियो घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदृत्य गोचर गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो हर हर प्राप्त एको अवर न कोई तू आपे पुरख सुजान जियो पुरख सुजान तू प्रधान तू देवड अवर न कोई तेरा शब्द सब तू है वरते तू आपे करे सोई हर समय रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो तब तू है करता सब तेरी वड्याई जो भावे तिवे चलाए जियो तुद आपे भावे तिवे चलावे सब तेरे शब्द सुमाए जियो सब शब्द सुमावे जंत भावे तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईगे आप गवाईये शब्दे रहा सुमाई तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाईये।

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरम खिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा जिन अंतर हर घर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने। हर संतां नूं होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान फालिया लय तूर मुख लावा। गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा। गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। तर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए लहे मेरी। गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजया तिर तोट न आवे हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिट्टा। हर दरगे गुर सिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर घर होया हर घर मन उठा। आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिसकी तिसना पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे। जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक कौ हर कृपा कर निद जपे हर नाम तरावे। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा। जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे

प्रीत आप दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत करे आप उर्जो अलकमलेख बासन माए मगन एक खिन पी नाए टरे खिन नाए टरिये प्रीत हरिये सीगार हबरस अर्पिये जय दुख सुनिये जम पंथ पणिये तय साध संग न डरपिये कर कीर्त गोविंद सुनिये सगल प्राशित दुख हरे कौ नानक संत गोविंद हर के महस्यो नियो करे हो ऐसी मन प्रीत करे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नियो करे हो जैसी चातक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करीजे यो मन दीजे अत लाइगे चित मुरारी मान न कीजे शरण परीजे दर्शन कौ बलेगारी गुरसो प्रसन्न मिलना विशुन्न तन देंदी साच स्नेहा कौ नानक संत अनंत ठाकुर के हरसों की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चक्री सूर स्नेहो

जय जय संत आराध्य तह तह प्रगटाया, प्रभु आप लिए समाए सह सुपाय, भक्त कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया, चमत्कार प्रकाश दह दिस एक तह दृष्टाया, नानक पयंपै चरण जंपै भगत वशल हर बिरद आप बनाया, आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे ना जावे, जाके ग्रेव हर ना हो सो सदगी रावे, अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला, न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद, प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे, नानक बखाने गुरबजन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे, जाको राम पतार ताके अंध कणा, सुगवंती सानार सोभा पूर बना, मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु, सर्व सिद्ध नव निद तिद करे नहीं ऊना सब कशु, मदरबानी तेरे मानी फिर सुहागता का बना, नानक वखाने गुर भजन जाने, जाको राम पतार ताके अंधकणा, आओ सकी संत पास सेवा लागी है, पीसो चरण पखार आप त्यागी है, तया मिटे संताप आप ने जानाई है, शरण गही जे मान लीजे करे सो सुख पाई है, कर दास दासी तज उदासी कर जोड़ दिन रहन जागी है, नानक वखाने गुरबचन जाने आओ सकी संत पास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर के रंग गोविंदा सिमरन लग गया, परम मोहकार दूजा सगल तिने त्याग गया, मन शांत सहज सुभाव उठा अंत मंगल गुण गाया, नानक वखाने गुरभजन जाने जाके मस्तक पाक से सेवा लाया, आसा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल, चंत मिलो संतन के संग मुए उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया, कतहु न तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमय, सुमरत अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो,

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

ताप चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लब्द गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन सगल इश पूजंतिया हर कंठ लागे दिस भागे मिलना सेज सुहंतिया प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी सगल करमल पय खान बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

लग तब उपर तीर्थ सहज जोग बेबाण, लग सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लह सुरती लह ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ पुरा।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमे चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेख किया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया आनना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड़े आईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ो वड़ा वड़ मेदनी, सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगना पेखना पाएंदा, श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्यानी है, पितरी चोर करे, वड़गे हाथ दलाल के, मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे महला पहला, जो जोरू सिर नावनी, आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस, नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखी है, बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वसे आसोए पौड़ी, तुरे पुराने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया,

करना कियो कल आपे ही ते तारी है। देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है। आपन हथी अपना आपे ही का सवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए। नानक आस कंडी है सदगी रहे समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आस क्यों ना आखिए जे लेखे वरते सोए। महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुत्था जाए। नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए पौड़ी। जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा समा।

तपी सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा कर अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाई मुझे तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

की आस करे जम निहारे ससा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो

आस बड पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्ज पसना देख आग, काल फास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग, कर विचार विकार परहर

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च

अंत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो

देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बद क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जनु बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ राता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत सुमानिया, महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मनमाही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्या जिन मन होर मुख होर

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो हरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूट।

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध कर।

अंतर मैल न उतरे हो मैं बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। कोड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी अरहाओ सात वेद सिमर सब सोध सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्तन को उपावे मन वेखो कर बिचारी आर सरमजन कर इस नाना प्रम आए तरसारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सदगुर अंधारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजो।

निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश अरहाओ ता गुरु तुमको होए दयाल संत संग तेरी प्रीत तापुड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमासा पूर्ण आसा तवे न व्यापे चिंता पवर तुम्हारा ओ मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो।

अपन हाथ मतात सियान प कहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमामन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवा सब त्यागे जंप ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़े।

सागल सिट को तनी कहीजै, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव ब्रंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभु की

साध संग नानक दर्स पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हो जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती नीकी ए ठहराई मेर साधु हर्ष।

ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते थाए सा संगत कौ जोई न सके मर मन तो वे पाए आमु आए परे शरण आए गुज पाप को बौध पर जार मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उरझाए जन नानक अंग किया प्रभ करत जा के कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा आप जस मिटे होवे जग कीरत दरगह बैसन पाइये जम की त्रास नास होए खिर में सुख से सेती कर जाइये जाते काल न बिरथी जाइये आठ पैर सिमरो।

आओ। साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध, काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाध, अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ। चरण कमल आराध हिरदे एक स्यों लिव लाओ, पार ब्रह्म प्रादया तारी बक्सली ने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण शरमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काल

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रगास पए सत्संग दुरमत बुद्ध ते आगी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभु स्वामी ओत पोत प्रभु साथ। शरण परयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच दे मनहार आए जी जब तब संजम सच आधार हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरण वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रति

अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे ना जागे माया मोह प्यार, नाम ना चेत सबद ना विचार है।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल सत्संग उठिया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी सावेला प्रवान जित सतगुर फेटिया होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया परख खजाने पाए से बौड़ ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा विशोहे जंबूर खवे न वंजन गाखड़े जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच। महला पंजवा जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद दे कुदरत तेरिया सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिह देह जिसनु होए दयाल हर नाम से लेह अगम अगोचर बेअंत।

रंगरत से जोन ना जोमना, अंतर बार एक नैन अलोमना, जिनी पिछाता हुक्म तिन कदे ना रोमना, नाओ नानक बगसी।

आओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दो सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो यो अवसर कद पई है प्रमत फिरत तेल के कप ज्यो गात बिन।

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रेलाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइए। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन सांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातरक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवर पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले

कोड़ अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

से पासे ती कर जाही। नरपत जान गयो सेवक सियाने राम, सर पर विछड़ना मोय पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाईए, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईए। हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के

आन आव मद मजल तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ भरी पी लाए जमकाल एत मद पीते नानका बहुते खटिए विकार ज्ञान गुण सारा मंडे पौ मास आहार नानक यो पूजन सच है सच नाम आधार काया लहन आव मद अमृत की तार सर संगस्तों में लाप होए लिप कटोरी अमृत परी पी पी कटे विकार पौड़ी आपे सुनर गण गंधर्बा आपे खड़ दर्शन की बाणी आपे शिव शंकर महेशा आपे गुरमुख

आए। जन नानक वडियाई आखै हर करते की, जिसनु तिल ना तुमाए। श्लोक महला तीजा, मानस परिया आणिया मानस परिया आए। जिद पीते मत दूर होए, बरल पवे बेचे आए। अपना प्राया ना पछाणई,

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुलिया जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसिया मन आए। नानक आप अमयोग है।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहा तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुवार नानक से बड़ भागी जिन घर नाम ते आया गुर प्रसादी मन नमसाया वढ़ांस महला तीजा होमे नावे नार विरोध है दोना वसे एक ठाए होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला पंजवां कार पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं किछ पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावे, एक तिल ताका मैल न पावे, सुहावी कौन सो वेला, जित प्रमेला रहाओ, लाख भगत जाको आराध, लाख तपीसर तब की साध,

पूरे मन निर्मल कोय संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ंस मगल्ला पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ंस महला पंजवा

तीस तुम्हारी वढ़ांस महला पंजवा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे अंतरलोचा मिलन की प्यारे हौ क्यों पाई गुरपूरे जे सो खेल खिलाई गए बालक रह न सके बिन कीरे मेरे अंतर भुख न उतरे अमाली जे सो पूजन मैं नीरे मेरे मंतन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मिल्यो मित्र सुखदाता ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हम एक खेन तिस बिन रह ना सका।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री

मामना साभ्यो पाइगन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे सब उपाय गिने आप आपे नदर करे वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना सब उपाय गे आप आपे सर्व समाना।

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप शाने गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुखाय, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम। गुरमति मन कर वसया सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके सचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान है बार वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निदान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्म वडभागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिवलागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुरु अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाय जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजी है जा सदगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे न चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे

ठाकुर मानने से प्रधान हर से तीरंग रहते हर से अघाए सह सुमाए घड़कर मैया जाते से ही सज्जन संग से सुविए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर पर डिटा तिन कैसल कुर्बाने श्लोक दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सबल जिनम जय कड़ उठा सच तनी संत तिन खनिये वन्या जिन मेरा हर पर डिठा राम जन चाह अघाने हार घर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्यो बूठा सुख पय दुख नास परम विनाश तन ते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिए वन्या जिन कट मेरा घर प्रभूटा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से ही कंडया नानक जाने सत साई संतना भारा शंत मिल जल जले खटा ना राम संग ज्योति ज्योत मिला ना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपे जानिए ते सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक प्रम पै गुण बिनस मिल जल जले खटाना वढ़हंस महला पंजवा प्रभ करण कान सुमरथा राम रख जगत सगल देखथा राम समरथ सरणा जोग स्वामी कृपा निसुखदाता हाँ कुर्बानी दस तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चिन्ह ना जाए लखया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कान सुमरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवार खिनम है रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बौड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आड़ पैर घर त्याई गए राम मन इच्छेड़ा फल पाई गए राम मन इच्छ पाई गए प्रभ ते आईये मिटे जम के त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाईये बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याईये दरवाजे अनहद वाजे राम काट काट घर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे।

ना पाले आप निराल तंदे बादी करोंग चिड़ावन खारो आजकल कर दिया काल ब्यापे दूजे पाए वे कारो जम मार्ग पंथना सुजई उजड़ अंध गुबारो वा ना जल्ले फुतलाइया ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सीगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिसे कर बारो इब के राहे जमन नाही पछताने सिर पारो बिर सच को बेली नाही साचा यो बिचारो बाबा रोवे रवे सो जानी है मिल रोवे गुणसारे वा रोवे माया मुठड़ी तंदड़ा रोमन गारे वा तंदा रोवे मैल न तोवे सुपनंतर संसारो ज्यों बाजीगर परमे पूल।

बिन सतगुर परम पुलाणिया, क्या मोह दिसन आगे जाए, क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए, दुखो दुख कमाए। नाम रतिया से रंग चलूला, पिरके अंक समाए, ते जेवड़ अवर ना सूजई, किसे आगे कहिए जाए। तो सच्चा सच सलाहिए, जे सतगुर दे बुझाए, जिन्नी सचड़ा सच सलाया, हाँ तिन लागो पाए। सीजन सच्चे निर्मले, तिन मिलिया मल सब जाए, तिन मिलिया मल सब जाए, सच्चे सरनाए, सच्चे सहज सुपाए। नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुर दिया बुझाए, अनदिन भगत करे रंग राते, नानक सच समाए। जिन्नी सचड़ा सच त्या

तू करण कारण समर्थ है सृजनहारे जिस तू मिले प्यारे सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

अंतर सांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओस नु सुख न उबज भावे सौ गेड़ा आव जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई हौमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए ससंजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए तिसकी मुठ्ठी विच जगत सब आया तिसको तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तो ऐसा हर

ब्राह्मणहार यो मनुआ सदा सुखवस सहज करे व्यापार अंतर गुरज्ञान हारतन है मुक्त करामन हारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंद पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ हाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै पाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए महला तीजा शब्द साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिता बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जेकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम कौ साध समधिट दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई श्लोक महला पहला कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले मिलदियां टेल

काम क्रोध लोभ वो अहंकारा। अमृत लूटे मनुख नहीं बूझे कोई न सुने पुकारा। अंधा जगत अंध वरतारा बाज गुरु गुबारा। ओमे मेरा कर कर विगुते किहो चले न चल दिया नाल। गुरमुख होवे सो नाम ते आवे सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी हर गुण गावे नदरी नदर निहाल। सतगुर ज्ञान सदा कर चानन अमर सिर बाद।

प्यारे राखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अन दिन जागा, महा गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

आपे अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

सब जगह मछली हर आपे, आप फुल न फुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस तापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निदान है।

आपे शब्द समाहा, आपे लिखण आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

प्रसंतय से हितकारी। विद्या में विद्या सीरतिया नयन देख सुख पावे। जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे। जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी। नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवा हम ऐले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दिशा रहाओ। तुम सब साजे साजने वाजे जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना। तुम करो भला हम पलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बिधाते। तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जच कहो नानक हम ए हवाला। राग संतन कै पाछ सोरठ महला पंजवा कर दूजा। माद गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम रख नहारे। पाग साग अथा लहर महें

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हराओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हिरदे ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करमा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ते आई है सिमरहो हर हर नाम परानी बिरसे काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकी कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत नह तृपतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रापाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनासी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

जो करे सोई सोई जाने, रह न कछुए छानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह, पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभु शरण आई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी, जपंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाईए, हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे, तो जन निर्मल जीवे, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी, आनंदन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कड़ा सुहेली, आद अंत मद नानक को, तो प्रभु होवा बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी, संत या बतावो कारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी।

मिले स्वामी प्रीतम अपने, हर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नांग जन पाया, सगली इश पुजाई। सोरठ महला पंजवां, गुर के चरण बसे पीतर, शुभ लखन प्रभ कीने, हे कृपाल पूर्ण परमेश्वर, नाम निधान मन चीने, मेरो गुर रखवारो मीत, दून चौनी दे वड़ियाई, थोबा नीता नीत रहाओ, जी जन प्रसगल उधारे, दर्शन देखन हारे, गुरपूरे की अचरज वड़ियाई, नानक सद भले हारे। सोरठ महला पंजवां, संचन करो नाम तन निर्मल, तरती अगम अपार, बिलश मनोद आना सुगमानो, खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सभोयत, जड़ लंगो बिल संसार रघाव। है कृपाल पूर्ण अविनाशी, आपे की निसार, पेग पेग नानक बिसानो, नानक नहीं सुमार। सोरठ महला पंजवां, गुरपूरे अपनी कलतारी, साब का उपजी दया, आपे वेल वडाई कीनी, कुशल खेम सा भया, सदगुर पूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म जस सदा निहाल रखाओ। अंतर बार थन थनंतर, जल कद पेखो सोई, नान गुर पायो वड़ पागी, ते जेवड़ अवर न कोई। सोरठ महला पंजवां, सुख मंगल कल्याण सहज तोन, प्रभु के चरण निहारिया, रखन हारे राखो बारक, सदगुर ताप उतारिया, उबरे सदगुर की शरणाई, या की सेवना बिरती जाई रखाओ। कर मैं सुख वार पुन सूखा, प्रभ अपने पय दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभु वा कृपाला। सोरठ महला पंजवां, साधु संग पया मन उद्यम, नाम रतन जस गाई, मिड़गी चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण मसाई, सुख पाया सहे तुन उबजी, रोगा कान मिटाई रखाओ। क्या गुण तेरे आख वखाना, कीमत कह न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना पया सखाई। सोरठ महला पंजवां, गए कलेश रोस अविनाश, प्रभ अपने कृपा थारी, आड़ पैर आराधो स्वामी, पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख लहो पाई मेरे कौ, प्रभ आगे अरदास रखाओ। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, कौ नान गुरपूरा पेट्यो, मिट्यो सगल अंदेसा। सोरठ महला पंजवां, सेमर सेमर गुर सदगुर अपना, अगला दुख मिटाया, ताब रोगे गुर बचनी।

घर घर नाम ते आई सुख सागर प्रा विसरो नाही मन चिंदेड़ा फल पाई हराओ सब गुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा थारी पार ब्रह्म प्रापय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सरबन दान मंगल स्वरूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब टूंडन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याए नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुरपूरे सद कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिरसा हा पातशाह उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराजित लाथे मिल साह संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा फलसिट करे जयकारा नांग पा मेरे साथे जन्म मरण पै लाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंध मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्त करो सदा प्रवे अपने जिन पूरी कल राखी जी जन स पय पवित्रा सगुर की सच साखी बिघन मिरासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सा पावन जन नानक सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहेब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल तन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन साह संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया खुदल खेम सावतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रघाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रस गुण गाया प्रकट्या जम का भाषा।

पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे माग पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पनवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी रव रव रया पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मन बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदर मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन तिर परदेश सिधायो हुण नई संदेश रो मायो एक उसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होमे पीत गुर खोई तौ दयार बीठलो पायो तब रहो अंधेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो सर्व गुण

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाती पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रा पाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया सुख सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान इच्छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुपाय मिले गोपाला

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सासंग तब हू न कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नायक को गुण, अराख लिहो शरणाई, तोरठ महल्ला नाम, माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत, केवद रो को तागे रखाओ, वेद पुराण सिमरत के मास

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कज बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहाओ दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यो लागे जल ही निरतन देखियो नरको संग शाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इन स्यो न्यो लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर परपंच उधर निज पोखयो पास की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सुने वर पै नहीं जाके कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोगते रहे न्यारो नाय मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग।

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

आवे हो, ऐसो बेडी बरना साको सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस जाखे पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर तर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अजत दिशा सिद्ध नवृद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाज उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पै है चकूरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यों तोर तमन स्यों जो रह रहाओ। जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीर्थ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस भगत हेत गावे रविदास। जल की पीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी यो तन होए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास चुमारा। चमरटा गांठ न जनई

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोगश पाईए पूर्व लिखे का लहना। नाम खसम का चितन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हां मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए। तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए। क्यों कर साच मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए। ता पत रहे आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए। तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए। जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल। क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए। बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा। नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेख सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब के

आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे करते सुख पावे, बिन सतगुर सब मोई बिरलाए, अन दिन दाजे सांत ना पाए, सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सांत सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिने प्रद पाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कई नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास हर नाम त्यावे रखाओ, इहु हर अंगूढ़ा।

आग साच रखे अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभिमान

जो घर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, अरख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट रोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर।

वो मन छूट बिरस जाए परमाई अंदरूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई कोर सूख आनंद विराज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तिसना सा बुझी है नानक त्रिपत अगाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभु की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए विखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड किसी पै सगले लर लर मुआ ओं बलगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमकी सजन सुहेले अरखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना पुन दान बोदैन कौ न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभु जी को नाम जपत मन चैन बहु प्रकार खोजे सब ताको बिखमना जाई लैन रहाओ जाप ताप प्रम बसदा कर उर्द ताप लै गैन ए बिद न पतिया नो ठाकुर जोग जूत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रापेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्तर करे नेचल इव मनुआ बौर न कतहु तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समगरी जियो ही यो देव अर्पो अपनो चीत रखाओ पर तान पर तान पर की निंदा इनसो प्रीत न लग गए संत संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्राव सर्व सुख दयाला मांगे दान नाम तिरु नानक क्यों माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा हर घर लीने संत उबार हर के दास की चितवे बुरियाई तेसी को फिर मार रहाओ जनका आप सहाई हो निंदक पागे हार प्रामत प्रामत उहा ही मुए बाहुड़ ग्रे नाम मंजार नानक शरण परे दुख पंजन गुण गावे सदा अपार निंदक का मुख काला होआ दीन दुनिया कै दरबार तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पत पुनीर किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक मन विश्वास प्रतारिया क्या नरेन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सगाई जिन दुखा काटिया केत रखाओ हा दे रखो अपना कर बिरथा सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सगाई साचा साहेब हुआ रखवाला रख लिगे कंठ लाए निरपो पैसदा सुगमाने

मार दूध जैसे बाले सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवां पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बहार ठाकुर भगतन का हराबरिया सर्व ठाई रखाओ ताको कोई ना पहुंचे नकारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवां दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूर्णवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारे जैसा बित तैसा हो वर्त अपना बल नहीं हारे हरहाओ आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवां जा को हारंग लागो इस जुग में तो कई तगै सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गे आत्म रंग

शरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हरना लोभ चूड़ निंद, ए भी करत गुदारी। मृत न आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नान प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन शाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म मोरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

नाम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

नेड़े तृष्णा अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा, ओ नाम हर का सदा जाचो दियो प्रतरणी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही सचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करे प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे ना।

कदे ना विसारी अन दिन सुमारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता इहो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरे सत्संगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो आन दिन रहे लिवलाए ता सहे समावे जियो।

अंजनो जियो दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नाम सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोल जियो नित जपे तेरे दास पुरख अतोल जियो संत रसन उठा आप तूठा हर से सही मातया गुर चरण लागे महापागे सदा अन दिन जागया सदा सदा सिमर तब्द स्वामी सास साध गुण बोलई बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु अमोलई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरू मर मना जाना संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ हनुमान सरगरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना प्यार वेद आर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना कह कबीर सो परमे नाही पगलग राम रखे सर नाही तिनते पैर पैर ते करियां आप कटे तन छीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कमन बिद कीजे सोधन आमन लागा माल पिता भाई सुध बनता कहो कऊ है का रहाओ जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना जो जन पाओ पगत कह जाने ताको अचरज काहो ज्यों जा जल में पैसन निकसते

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेद तायो पूजो पाती ताया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए बो ना कछ

कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां छत नीका अनाज मंगो सत सीका कऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी।

नाथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा, हीरा लाल अमोल कहे पारी, बिन गाक मी का काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो, ताब रतन बिकानोन लाखा। मेरे मान गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर, तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु गावारी, माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के, हर साधु शरण हमारा का। हर अंगीकार करो प्रस्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है, तो वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा, हम बार कशु ना जाने गातमित। तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना, हर घर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट।

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तेन हम चरण सिरे वेखिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयांग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर चाख बार हाव। तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु ले उन्मन लागबा। तिसना अगन बुझी सात पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुरदर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवै हम घर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिर माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सदगुर माजा। हौ बलिहारी सदगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलो वडभागी सब केलबख गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वडभागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज कीड़ा। हर के अर्थ खर्च न सक जम काल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। पलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पा खान हर ओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा। हर घर सतगुर पुरख मिलाव गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उरतारे। हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम। मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर घर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत सरी महला चौथा हर घर नाम जपाह गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर घर भगत रिड़ावो

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिलिगे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जग जीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी।

आपे सदगुर समुंद मथाहा आपे मत मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल ससंगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मेल ससंग ओ महाराम हर गुण बाणी शर्म सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी

के कूप जैतसरी महला पंजवा कोई जान हर्षों देवे जोर चरण कहो पको सुबरसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन का निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर क्यारस में मगन होद कृपा ते मां बिखियाते तोर आयो शरण दीन दो पंजना।